बदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आए मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

एक है आप नहीं कछ परम सहस्यानप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेख पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेड़ संग राम गुण रवे पार ब्रह्म के दरगाह गवे सुनकर वचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखयो जाका मंत्र अमृत दृष्ट।

आप अष्टपदी जब अकार एहु काश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप। जह अशल अशेद अभेद समाया, ऊहां किस

श्रेष्ठम चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान।

है यो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कह हृदय सब धर्म, संत जना सुन है शुभ वचन, सर्व व्यापी राम।

पंच प्रधान ते जिह जान्यो पर पंच कुसंबास बहुरंग कणो सब मिथ्या बल बंच नह जापै नह बूझिए नह कछ करत विचार स्वाद मोरस बेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत भगवान।

सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे, भगत मुखे ते बोल दे सेवा।

ए हर वस्त संभाले नाम निधान हर बन जीए हीरे पर वाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड़ बेताले से उजड़ परम पवाई है ज्यो चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा

मन खोटे कूड़ कूड़ियारे, जां गुर कहै उठो मेरे भाई, बह जाहे पुसर बगलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै, चुन कढे लद्धो वारे। ओए अगै पिछै बह मोह छपाए।

जिहनर राम भगत नह साधी जन्मत कासना मो अपराधी रहाओ मुझ मुझ गर्भ गए कीन बचया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मझिया।

साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान, बाहर उदक पखारी है, कट पीतर विभिद विकार, शुद्ध कवन पर होए बो सोच कुंज।

पंच पदे मोह कुटंब मोह सबकार मोह तुम तजहो सगल वेकार मोह अर भरम तजहो तुम वीर साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ।

आओ बहुते औगुण कु कह कोई जांत सिपावै बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखां तहें एको सोई।

निहाल। बिंजन भोजन अनक प्रकार रंग तमाशे बहुत विस्तार। राज मिलख अर बहुत फुरमाइश मन नहीं त्रापै तृष्णा ना जायस। बिन मिलबे एहो दिन।

आग कटे कन्हेरे सुख सहज आनंद कन्हा गुर सेवा ते पहे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा।

दृढ़ाया, पाए पर है सतगुरु कै जिन परम बिदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच साज सवारिया रहा।

जहाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाखिया। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुपाखिया। पढ़

अमृत शक छके गुर तुठ हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कैर दै वसया मिटे तिसह विसूरिया अगाध बोध

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न होई। इहो प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ, सत

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच देख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाओ।

बड़ पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत भगत भंडारे जिन दर्शन सतगुरु

गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिरना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा सतर दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ गुजरी महला पंजवा तू समर

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं।

मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर भवजल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ शरणी लब लो।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीता नानका बहुते खटिया है बेकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख शब्द

निर्मल मन करण कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम तिन चरण सरे वह हम लाग है तिन कै पाए राम हर हर चरण।

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रथ जगत सगल दे हथा राम समरथ शरणा

पयाण ज्योतिष पावे सम्रथ सोचिए हिलड़ा एहो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख।

दिन रस भोग सात अन महल समाणी जिन प्रयो जाता कर्म विधाता बोले अमृत बाणी गुणवंतिया गुण सार है अपने कंत संभाल है।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख,

पौड़ी। तू करता सब किश जानदा, सब जी तुम्हारे, जिस तू भावै तिस तू मेल लह, जिस तू भावै तिस तू मेल लह। क्या जंत विचारे, तू करण कारण समरथ है, सत सिरजन हारे, जिस तू मिल है प्यारिया, सो तुद मिले।

हन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख को हो सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहने गुर सिख चलिया, श्लोक महला तीजा।

आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जप हो सुख होई अहनस गुर के चरण सरेव हो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अपने गुर मिले ए मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो

चात्रक जल जो चात्रक जल बिन बिल लावै बिन जल प्यास न जाई गुरमुख जल पावै सुख सहजे हरिया पाए सुपहाई।

जिन हरते आया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदाता निखोट न कभी जाई आनंद पया।

गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोठ महला।

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यो।

भया भिखारी अक्षत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म।

नाहीं। सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पहगी। जो

भाई किव छुट है हम छुटका की, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जप

जवाम। मांगौ राम ते सब थोक, मानुख कौ जाचत श्रम पाइय, प्रभ कै सिमरन मोख रहाउ। कोखे

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कौ जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द पर।

बिन गुर मूड भये है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफलो जन्म सना

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर

परमेश्वर है, आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

पौड़ी। हर एक निरंजन गाय है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक

विखम थान हुंजिन रखिया, तिस तिल ना विसार। प्रभ विसरत सुख कदे नाहीं, जस है जन्म हार। सलोक

सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहे विजोग साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग। स्लोक

रहाओ। ऊज समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, रात रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप भुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत सिउ, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुम्भ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल सिउ पाओ ना कीनो, नह सत पुरख मनायो। तावत को ताव है बहु पांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान